प्रसाद सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम पारा सत्यावह है सत्यावह तुझी हर सच्चे सृजन हारा सब जीत माडे जी तू जिया का दा तारा हर त्यावो संतोह जी सब दुख विसारण हारा हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तो घट घट अंतर सरम निरंतर जी हर एक पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा।

प्रत्पारा अमरे दुष्ट सभ्यत्म काबो हमरे दुष्ट सभ्यत्म काबो हो आप हाद मोह बचाबो हो सुखी बसाए मोरो परिवारा सेवक सिख सभ्य करतारा मोर अच्छा निज कर दई कर सब हरण को आज सिंघरिया पूर्ण होए हमारी आशा तोर भजन की राह प्यासा।

एक बार चौपाई को कह चौपाई संबत 1700 जाए अर्ध सहस पुणीन कह जाए भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीर तद्रव ग्रंथ सुधारा।

चरित्र समापत वस्तु सुमताप जुन दोहरा दास जान कर दास पारो कीजा कृपा पारो आप हादर रख मोहि मन करम बचन बिचारो चौपाई मैं नगरिसा प्रथम नाऊ केशन बेशन कबू न त्याऊ कान सुने पहचान तिन सौ लिवलागी मोरी भगिन सौ।

ब्रह्म लज्जा कर भागा प्रभु कुमेर सुख दाता बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाव नानक प्रभ अविनाशी ता की सेवन बिरथि जासी अंत करे तेरे दासा जा पूर्ण होई आसा बिलावल महला पंजवा

चरण कमल मकरंद लो भित मरो अन दिलो मोहे आही प्यासा कृपा जल देहे नानक सरन को होए जाते तेरा नाम वासा लाकौड़ी पूरी महला चौथा काम क्रोध नगर बहु फरिया मेरे साधु खंडल खंडा हे पूर्व लिखत लिखे गुर पाया मन हरले मंडल मंदा हे कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे कर डंडा तो पुन वड्डा रहाओ।

काल मूर्त जुंदी सैपम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त जुंदी सैपम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच को ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच को ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच एक ओंकार सतनाम करता पुरख।

काल मुहूर्ता जूनी सैप अहंकार प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है पी सच नानक होसी पी सच सोचै सोच न हो वही जे सोची लख बार चुपै चुप न हो वही जे लायर हल बितार भुखे आ भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार सहस सियाण पाला खो ही ताकन चलै नाल किवस चेयारा हुई है कि कूड़ै टुटै पाल हुक्म रजाई चरणा नानक लिखिया नाल हुक्मी होवने आकार हुक्म न कह जाई हुक्मी होवन जी हुक्म लै बड़ियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाइया हिक न हुक्मी बख्शी से एक हुक्मी सदा पवाइया हुक्म अंदर सब को बाहर हुक्म न कोई नानक हुक्म है जी बुझे ता हम कह न कोई गावे को ताण हुए किसै ताण गावे को दात जड़ा निशान गावे को गुड़बड़ियाई अचार गावे को विद्या विकम विचार गावे को साच करी तन खेह गावे को जी लै पर देह गावे को जापै दिसै दूर गावे को विखा हादरा हा दूर कथ न कथी न आवै तोट कथ कथ कथी कोटि कोट कोट दिंदा दे लैंदे थक पाहे जुगा जुगंतर खाही खाहे हुक्मी हुक्म चलाए राहु नानक बिकसावे प्रवाहु साचा साहु सात नाय पाखे आ भाउ पार आखै मंगा देह देह दात करी दातार फेर के अगै रखी अज दिसा दरबार महो के बोलन बोली है जित सुन तर प्यार अमृत वेला सच नाव वड़ियाई विचारो करमी आवै कपड़ा नदरी मुख दवारो नानके वह जानिए सब आपे सचार था पिया ना जाय कीता ना होए आपे आम निरंजन सोए जिन सेवे आत्म पाया मान नानक गावीए गुण निदान गावीए सुड़िए मरण रखिए भाव।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल अनामे समस्तल निवासे निरकामंग विभूते समस्तल रूपे को कर्मंग प्रणासी सो धर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिम कुड़िंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय विग्निमय हरियंग करियंग करिमल रहीमे।

रंक पयो राम कहि पूपा अंडज जीरज से तज किनी उत पुज खान बहुर रत दिनी कहूं पूरा जहूं बैठा कहूं सिमट पय शंकर कैठा। शिगरी श्रेष्ठ दिखाई अचंपव आद जुगाद स्वरूप स्वयंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार असिख संघरो दुर्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेस करो रण काता। जे अस तुज तब सरणी परे तिनके दुर्ट दुख तुह मरे पुरख जानु पग परे तिहारी तिनके तुम संकट सुटारी।

संबत 17 सहस्य प्रणिज्ञाय अर्ध सहस्य पुण तीन कही जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रवार तीरथ तद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक न माने ओ सिमरत शास्त्र वेद सबै बहु भेद कह हम एक न जाने ओ श्री अस्पान कृपा तुमरी करू मैं न कहो सब तोहे बखाने ओ दोहरा।

महापुरुष हर वेले कमाई करदा है। संत ओही है पूर्ण जिहड़ा गुरु दे सन्मुख है, अपनी मत छड्ड दित्ती है, गुरु की मत लैके ते सुरत नूं शब्द नाल जोड़िया, नाम की कमाई की, सिमरन करदा हर वेले चिंतन विच। बुद्ध प्रगास जिहदे अंदर आत्म विछैणी बुद्धि प्रगट हो जाती है, आत्मा दे विछे दा निर्णा कर लैंदा है, ओही शांत आत्मा है। वरना उन्ना चिर आत्मा शांत नहीं हुंदी जिन्ना चिर आत्मा दा ज्ञान नहीं हुंदा है। उतरा चढ़ाव बने रहिंदे ने, हरख शोक बनिया रहिंदा है, खुशी गमी। बुद्ध प्रगास बुद्ध आत्म विछैणी बुद्धि प्रगट हो गई है, ओही महापुरुष कौ कबीर बुद्ध बदली मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। भगत कबीर साहब जी ने ता ही कहा सी, ब्रह्म ज्ञान हुंदा है, आत्म विछैणी मत प्राप्त हो जाए, आत्मा दे विछे दा निर्णा कर दी, शरीर दा मोह निकल जांदा है, आत्मा दे आनंद विच महापुरख टिकिया रहिंदा है, पूर्ण पुरख पूर्ण पद नूं पहुंच जांदा है। सुरत मत बुद्ध प्रगास ताई कह रहे, गहर गंभीरत अपार गुणतास, बहुत गहर डूंगा हो जाता हिरदा, गंभीर निरहल हो जाता है, अडोल अवस्था नूं प्राप्त हो जाता है। अपार गुणतास बेअंत गुणा का खजाना, बेअंत गुण वो महापुरख के हिरदे विच प्रगट हो जाते हैं। ब्रह्म दा ज्ञान होण ते गुण ही गुण आ जांदे ने, ज्ञान ही ज्ञान, ध्यान ही ध्यान। सो अपने आप ज्ञान दा प्रगटावा हुंदा है, झरना चलदा निज रहो, गुरमुख बाणी अगड़ कढ़ाव है। भाई गुरदास साहब जी फरमान करदे ने, हिरदे दे विचों एक रस ज्ञान दा झरना, नाम दा नाम दे विचार ज्ञान दा झरना चल पैंदा है, फुट पैंदा है। ऐसी गुरमुखां दी अवस्था हुंदी है, अपार गुणतास जो पूर्ण महापुरख अर्थ करदा है, विचार देंदा वो किसे टीके विचों नहीं मिलदी है, किसे विद्वान दे टीके विचों नहीं मिले। अपार गुणतास बेअंत वाहिगुरु वर्गा ही हो जांदा है, जिन्हां ना विसरा नाम से कनेह केहो जे, भेद ना जानो मूल साई जे है, जी जंत सगले प्रतपाल, जी छोटे गरीब जंत वड्डे, कोई गरीब आवे अमीर आवे, सगले प्रतपाल सारयां दी प्रतपालना करदे ने, सारयां ते दयालु हुंदे ने, किसे नाल द्वैख नहीं हुंदी। पूर्ण महापुरखां दे मन विच द्वैष मिटी जांदी, रह ही नहीं जांदी, अपना पराया मेर तेर ते खत्म ही हो जांदा। सारयां उपर दयालु हुंदे ने, कोई रखी जावे ते कोई चकी जावे, ब्रह्म ज्ञानी नूं पूर्ण महापुरख नूं कोई फर्क नहीं पैंदा। जी जंत सगले प्रतपाल सारयां नूं प्यार करदे ने, सारयां नूं सीसां देंदे ने, सारयां नूं इको जिहा सम उपदेश दिंदे ने, उपदेशं सम मित्र सत्रह, भगवंत भगत भाम ने। आप जी ने पावन बाणी सहस कृति विच फरमान कीते, जिथे कहा खट लखियां पूर्ण पुरख नानक नाम साध सुअजन है, इको जिहा उपदेश देंदे ने, दुश्मन आवे मित्र आवे, श्रद्धावान आवे निशरधक आवे, निंदिया करन वाला आवे प्रेमी आवे श्रद्धालु, इको जिहा उपदेश नाम जप विच भला होवे, परपकार ही करदे ने। जीए जंत सगले प्रतपाल नानक संता देख निहाल, सच्चे पातशाह जी कहिंदे सी महापुरखां नूं, ऐसे जो महापुरश हन स्वास स्वास भजन करन वाले, जिन्हां नूं मिल के दीदारे करके साहिब चेते आउंदा है, रब दी याद मन विच आउंदी है,
ਆਵੈ ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿੱਠਿਆਂ, ਮਨ ਕੀ ਕਟੀਐ ਮੈਲ ਸਾ